साहब तेरी वड़ी आई कोई ना वो ना जा ने मेरा ना वो ना जाने मेरा सचिया बादशाह

दीर्घायु देह आरोग्यता बक्षणी अंग संग सायो न चढ़दी कला बक्षणी। सरदार सुरेंद्र सिंह ते बीबी जगजीत कौर जी।

दिल्ली में शीशगंज रकाबगंज वाला साहेब बंगला साहेब सतो चंडिया साहेब जी दे सुख दे दर्शन दीदार मिले बलारे।

जलस्तु हि थलस्तु हि नदेस्तु हि नदस्तु हि वृक्षस्तु हि पतस्तु हि चितस्तु हि ऊर्ध्वस्तु हि भजस्तु अंग रटस्तु अंग।

धारी पौन के आहारी सब जंग जानियत है। त्रिण के बछैया धन लोभ के तजैया दित गौवन के जैया ब्रिक भैया मानियत है। नभ के उड़ैया ताहे पंच की बडैया देत बगुला बिडाल ब्रिक ध्यान ठानियत है। जित बड ज्ञानी तेनो जानी पखानी नाहे ऐसा न प्रपंच मन भूल आनियत है। भूम के बसैया ताहे भूचरी गजैया कह नभ के उड़ैया सोच रैया कह बखानी है। फल के बछैया ताहे बांदरी गजैया कह आदि सफिरैया ते तो भूत कह पछानी है। जल के तरय को गंगी ऋषि कहत जग आग के भजैया सो जगोर सम मानिय। सूरज सिवैया ताहे कौल की बढ़ाई देत चंद्रमा सिवैया को कवि के पहचानी है। नारायण कछ मछ तिंदुआ कहत सब कौल ना बकौल जय ताल में रहत है। गोपीनाथ गुजर गोपाल सब देन चार लिखी के सना।

नाचत फिरत मोर बांदर करत घोर दामनी अनेक भाव करी करत है। चंद्रमा शीतल न सूर स्थित पत तेज इंद्र सोना राजा भव भूम को भरत है। शिव से तपस्याद ब्रह्मा से न वेद चारी सन्नत कुमार सी तपस्या न अनत है। ज्ञान के विहीन अकाल फांस के अधीन सदा जुगन की चौकरी फिराई फिरत है। एक शिव भय एक गए एक फिर भय रामचंद्र कृष्ण के अवतार भी अनेक है। ब्रह्मा विष्णु के तेद यो पुराण के सिमृत सम्मोहन के होए होए बितय है। मोन दी मदार कितने असुनी कुमार कितने अंसा अवतार कितने काल बस भय है। पीर यो पिकांबर कितने गाने ना परत भूम ही ते हो के फिर भूम ही मिले है। जो कि जति ब्रह्मचारी बड़े बड़े छत्रधारी छत्र ही की छाया कई घोसलो चलत है। बड़े बड़े राजन के दावत फिरत देश बड़े बड़े राजन के द्रप को दलत है। मान से महीव और दिलीप कस छत्रधारी बड्डो अभिमान भुज दंड को करत है। दारा से दिल्ली सर द्रुजोधन से मान धारी भूक भूक भूम अंत भूम में मिलत है। सिज दे करे अनेक तो बची कपट वेश पोसती अनेक दान।

जो पेडार रहे उर्द मुख मान तेना मुंड ने हो रायो आदि इसको कामना अधीन सदा दामना प्रभी ने एक भावना विहीन कैसे पावे जगदीश को शीश पट कत जग कान में खजूरा दस मुंड छट कत मित्र।

भेंट जो घसत शेष बृछन सो माटी को भसैया बोल पूछ लीज जो सौ कामना अधीन काम क्रोध में प्रवीण एक भावना भीन कस भेंट पर लोक सौ नाचोई करत मोर दादर करत शोर सदा घन घोर घन करोई करत है एक पाए ठंड सदा बन में रहत ब्रिज फूक फूक पा भूम श्रावक धरत है पाहन अनेक जोग एक ठोर बास करे काग और चील देश देश विचरत है ज्ञान के विहीन महादान बहन हुजलीन भावना यकीन दीन कस के तरत है जैसे एक सौगी कहू जो किया बरा के बन का बहु संन्यास भेष बन के दिखावई कहूँ पान हारी कहूँ बैठ लाए तारी कहूँ लोभ की खुमारी सो अनेक गुण गावई कहूँ ब्रह्मचारी कहूँ हाथ पैर लगावे बारी कहूँ दंड धारी हो के लोग न भ्रमावई कामना दीन पर नाचत है नाचन सु ज्ञान के विहीन कैसे ब्रह्म लोक पावई पंच बार गीदर पुकार पर शीत काल कुंचर ओगत हा अनेक दा पुकार ही कहा भयो जप कल वत्र लियो कांच बीच चीर चीर चोर टाकु ठारन सो मारही कहा भयो फांसी डार बूढ़े जड़ गंगधार।

करीम सोई रस करहीम ओई दूसरो न भेद कोई भूल भ्रम मान वो एक ही के सेव सब एक गुरुदेव एक एक ही स्वरूप सब एक ज्योत जान वो देहु राम सीत सोई पूजाओ निवाज ओई मन सब एक पयन एक को भ्रमाव है देवता देव जज गंधर्व तुरक हिंदू न्यारे न्यारे देसन के

एक दूर ते अनेक दूर बूरत है, दूर के कनु का फिर दूर ही समाहेंगे। जैसे एक नद दे तरंग कोड उपजत है, पान के तरंग सब पान ही कहेंगे। तैसे विश्व रूप ते अभूत भूत प्रकट होए, ताही ते उपज सब ताही में समाहेंगे। केत कछ मछ केत उनको करत भज, केत अच वच होय सब पच उड़ जा।

लीन ताही ते उपज सब ताही मैं समाहेंगे। कूकत फिरत कित रोवत मरत कित जल में डुबत कित आग में जरत है कित गंग वासी कित मदीना मक्का निवासी कित उदासी के भ्रमाई फिरत है। करवत सहत कित भूम में गड़त कित सुअ पे चढ़त कित दुख को भरत है। ज्ञान में उड़त कित जल में रहत कित ज्ञान के विहीन जग जा रही मरत है। सोध हारे देवता विरोध हारे दान बड़े बोध हारे बुद्ध प्रबोध हारे जाप सी घस हारे चंदन लगाए हारे चुआ चार बोझ हारे बाहन चढ़ाए हारे लापसी गाह हारे गोरन मनाए हरे मटे।

सदैवं सदा सर्व सर्वत्र स्नेहं न कामं न क्रोधं न लोभं न मोहं गजो नियच्छयाद अद्वयजोहं न जन्मं न मरणं न वर्णं न व्याधं न रोगं न शोकं।

नभूपं न कायं न कर्मं न त्रासं न व्रासं न भेदं न परमं सदेवं सदा सिद्ध विरदं स्वरूपे नमो एक रूपे नमो एक रूपे नृयुक्तं प्रभाद अनुक्तं प्रताप युक्तं गच्छयाद विक्तयत रूपे न नेहं न गेहं न शोकं न साकं परेयं पवित्रं पुनीतं गतागं न जातं न पातं न मित्रं न मंत्रे नमो एक तंत्रे न धर्मं न भर्मं न सर्मं न साक्ये न बर्मं।

उदय दबाने कहूँ जा चकंद्र किन्नर कहानी कहूँ राजसी सात गीता मसी हो कहूँ जोग विद्या धरे तापसी हो कहूँ रोग रहता कहूँ जोग जुगतं कहूँ भूम के भुगत मैं वरम भुगतं।

तीर्थ तीर्थ वर्मत सुवरम कई यगन होत्र कई देव करम कई कर्तवीर विद्या विचार नहीं तदवतास पायत न पार कहूँ राज रीत कहूँ जोग धर्म कई सिमृत शास्त्र दुसरत।

गीत कहूं करत शास्त्र सिमृत उचार कई भजत एक पग निराधार। कई नेह देह कई के वास कई ब्रह्मत देश देशन उदास कई जल निवास कई अग्न ताप कई जपत उर्द लटकंत जाप। कई जपत जो कल्पं प्रजंत नहीं तदप तास पायतन अंत कई करत कूट विद्या विचार नहीं तदप दृष्ट देखे मुरार। बिन भगत सगत नहीं भरत पान।

ते ब्रह्मंड रचियो दस चार करी नव खंड सचियो रज तामस तेज तेज कियो अनुभव पद आप प्रचंड लियो श्रेय सिंध रूपिंद नकिंद नगं श्रेय जल चिकंदर।

प्रभजात न पात न जूत जुतंग जय तात न मात न भ्रात सुतंग जय रोग न सोग न भोग भुवंग जय जंप किन्नर जा छजुवंग नर नारण पुंसक जाह किए गण किन्नर जा छुजंग दिए गज बाजर थालक पांत गणंग भवभूत भवेख भवान दुअंग जहे अंडज से तज जे रजंग रज भूमा काश पताल जलंग रज पावक पवन प्रचंड बलि बन जास कियो फल फूल कली भुव मेरा काश निवास चितंग रज रोज

गण किन्नर जय छुजंग रचे मण माणक मोती लाल सुचे अन भंज प्रभान गंज प्रतंग जय पार न पावत पूर मतंग अनखंड स्वरूप दंड प्रभा जय जम्पद वेद पुराण सभा जय वेद गते अनंत कहे जय भूत अभूत न भेद लह जय वेद पुराण कतेव जप सुत सिंध दो मुकताप तप कई कल्पन लो तब ताप कर नहीं नैक कृपा निध पान पर जय फोकट धर्म सब तज है एक चित्त कृपा निध को जप है ते या भव सागर को तर है भव भूल न देह पुनर्धर है एक नाम बिना नहीं गोड वृति इम वेद उचारत सार सुती जो वारस के चस के रस

भंज जानिया भूत भूत है सदा गंज गंज मानिया अदेव देव है सदा भेव भेव नाथ है समस्त सिद्ध वृद्ध दा सदैव सर्व साथ है अनाथ नाथ नाथ है अभंज भंज है सदा गंज गंज गंज है सदैव सिद्ध वृद्ध दा अनूप रूप स्वरूप है अछिज तेज मानिया सदैव सिद्ध शुद्ध दा प्रताप पत्र जानिया न राग रंग रूप है न रोग राग रेख है अदोग दग दग है अभूत ब्रह्म भेक है न तात मात जात है न पात चिहन वर्ण है अदेघ सेघ भेक है सदैव विश्ववर्ण है विश्वंबर विश्वनाथ है विशेघ विश्ववर्ण है जिमे जमान के विकह सदैव करम भरम है अदवेख है अभेक है अलेख नाथ जानिए सदैव सर्वठौर में।

न जाच है न गंधर्व है न नर है न नार है न चोर है न साव है न साह को कुमार है न नेह है न गेह है न देह को बनाव है न छल है न छिद्र है।

न सीत है, न सोच है, न ग्राम है, न घाम है, न लोभ है, न मोह है, न क्रोध है, न काम है, न देव है, न दैत है, न नरको स्वरूप है, न छल है, न छिद्र है, न छिद्र के विभूत है, न काम है।

भ्रम है अभूत है, अछेद छेद है सदा, गंज गंज गंज है, अभूत अभेक है, बलिया रूप राग रंग है, न द्वैख है न भेख है, न काम क्रोध कर्म है, न जात है न पात है।

रूप राग न रेख रंग न जन्म मरण विहीन आदनाथ अगाद पुरख सो धर्म करम प्रवीण जंत्र मंत्र तंत्र जाको आद पुरख अपार हस्त कीट बिकै बसे सब ठौर मैं निर्धार जात पात न तात जाको मंत्र मात न मित्र सर्व ठौर बिखे रमे उजय।

जाच के नर मच मारस मुर्ग और का पार नेत नेत पुकार ही शिव सक्रो मुखचार सरब सबद बतार के दर्जा पही जह जाप आद देवा गाद तेजा नाद मुरत अताप जंत्र मंत्र नावे कर तंत्र मंत्रण कीन सर्व ठोर रहे ओ विराज धीराज राज प्रवीन जच गंधर्व देवदानो न ब्रह्म क्षत्रिय माहे वैष्णव के विघय विराज सूत्र भी वह नाहे गुड़ गौड़ न भील भी कर ब्रह्म से एक स्वरूप रात दिवस न मध्य उर्द न भूमा का स्वरूप जात जन्म न काल कर्म न धर्म कर्म विहीन तीर्थ जात्रण देव पूजा गुर के न अधीन सर्व सपद बतार के दर जानिय जह जोत शेष नाम सहंस फन नहनेत पूर्ण होत सोध सोध हटे सब असुर विरोध दानव सरब गाय गाय हटे गंधर्व गवाय किन्नर गरब पढ़त पढ़त थके महागप गढ़त गाढ़ अनंत हर हर कहियो मुस्

दुष्ट हरना सृष्ट करना दयाल लाल गोविंद, मित्र बालक शत्रु गालक दीन दयाल मुकंद, अघाव दंडन दुष्ट खंडन काल हुंके काल, दुष्ट हरन पुष्ट करन सर्व के व्रतपाल, सर्व कर्ता सर्व हरता सर्व के अनकाम, सर्व खंडन सर्व दंडन सर्व के निज भाम, सर्व भुगता सर्व जो

दुष्ट दंडन पुष्ट खंडन आदि देव खंड भूम काजले थले मह जपत जाप अमंड श्रेष्ठ चार विचार जेते जानिए सब चार आदि देवा पार से

ध्याय ध्याय थके महामुन गाय गंधर्व पार, हर हर थके सब नहीं पाइये तह पार। नारद आदिक वेद व्यास मुन महान अनंत, ध्याय ध्याय थके सब कर कोट कष्ट दुरंत। गाय गाय थके गंधर्व नाच वछर पार, सोत सोत थके महासुर पायु नहि पार।

को आत्मा स्वरूप है, कहां श्रेष्ठ को विचार, कौन धर्म को कर्म है, कहो सकल विस्तार दोहरा, कह जी तब कह मरण है, कह वंसुरक कह नरक, को सुगुड़ा को मूढ़ता।

सहति सन्नाहन अष्ट प्रभान बोल निबाहन तेज तुलंग जय जय हो सीमा खा सुर मर्दन भूमाकाश पताल जलंग चाचर जमकारन चिच्छुर हारण धूम धुंकारण द्रप मथे दाढ़ विव्रतंते जोग जयंते मनुज मदंते गूढ़ कथे करम प्रणासन चंद प्रकाशन सूर्य प्रतेजन अष्ट भुजे जय जय हो सीमा खा सुर मर्दन भरम विनाशन धर्म धुजे घुंगुरु गमंगण सहस्र झमंगण फणियर भंकारण धनम दुजे अष्टाट प्रहासन श्रेष्ठ निवासन दुष्ट

सुर नर मुन बंधन दोष निकंदन वृष विनाशन मृत मथे काव रूप मारे अधम उधारे नरक निवारे याद कथे किंकणी प्रसोहन सुर नर मोहन सिंहारोहण बितल तले जय जय हो से सब ठौर निवासन बाय बताल आकाशन ले संकटे निवारण धम उदारण तेज प्रकरखण धुंध तब दुख दोख दहंती ज्वाल जयंती याद अनाथ अगाध अच्छे शुद्धता समर्पण तर्क वितर्कण तपत प्रतापण जपत जिवे जय जय हो सी सदर प्रकरखण आद अनिल अगाध अभे चंचला चखंगी अलग भुजंगी धुंध तुरंगण तिच्छ सरे गर्क सा कुठारे नरक निवारे अधम उदारे तूर भुजे दामनी दमंके के हर लंके आद तंके क्रूर कथे जय जय होशी रक्ता सुरखंडन सुंभ चक्रतन सुंभ मथे बारज विलोचन प्रतन विमोचन सोज विसोचन कौज कसे दामनी प्रहासे सुख सरना से शुभ्र सुभा से दुष्ट ग्रसे चंचला प्रांगी वेद प्रसंगी तेज

चाचरी प्रचोदन दुष्ट विरोधन रोष और रोधन क्रूर प्रत्यय दुमराज विदुंसन प्रलय प्रजुंसन जग विदुंसन शुद्ध मते जाल पा जयंती शत्रु मथंते दुष्ट प्रदाहन गाढ़ मते जय जय हो से मैं का सुर मर्दन आद जुगाद अगाध गते खत्रियान खतंगी अभय अभंगी आद अनंगी अगाध गते ब्रलाज बिहंडन चुर दंडन तेज वचंडन आद भृते सुर नर प्रतिपारण पति दो धारण दुष्ट निवारण दुख हरे जय जय होशी मैं का सुर मर्दन विश्व विदुंसन सृष्ट करे दामनी प्रकाशे उन्तर नासे ज्योत प्रकाशे अतुल बले दान वी प्रकार खण सर वर वर खण दुष्ट

दुख दोख प्रवचन से वक्रक्षण संत प्रतक्षण सुत सरे सारंग सन्ना है दोष प्रदा है हर दल गा है दुख हरे। गंजन गुमाने अतुल प्रवाने संत।

जाय जय रूप रेख कहे बास तास कहे कौन भे कहे नाम तास है कवन जात जे शत्रु मित्र नहीं पुत्र भ्रात करुणा निधान कारण स्वरूप जे चक्र चहन नहीं रंग रूप जे खेद भेद नहीं करम काल सब जीव जंत की गर्द पाल उर्धंग बिरहत सिद्धंग स्वरूप बुद्धंग पाल जुद्धंग अनूप जय रूप रेख नहीं रंग राग अंशिज तेज अनभिज दाग जल थल महीप बंदन दुरंत जय नेत नेत निस दिन उचरंत पायु न जाय जय पैर पार दीनान दोग तहता उतार कई गोट इंद्र जय पानहार कई गोट रुद्र जुगिया द्वार कई वेद व्यास ब्रह्मा आनंद जय नेत नेत निस दिन उचरंत त्व प्रसाद सवये दीनन की व्रतपाल करे नित संत उबार गनी मन गारे पक्ष पशु नक नाक नरा देव सर्व समय सब को व्रत पारे पोखत है जल मै थल मै पल मै कल के नहीं करम बिचारे दीन दयाल दयानित दुखन देखत है पर देत न हारे दाहत है दुख दुखन कौ दल दुजन के पल मै दल डारे खंड अखंड प्रचंड पहारण पूर्ण प्रेम की प्रीत संभारे पार न पाए सके पदमापद भेद कते भेद उचारे रोज ही राज बिलोक राज करो कुरुहान की रोज नटारे कीट पतंग कुरंग भुजंगम भूत भविख भवान बनाए देव देव खपे हंगेव न भेव लख्यो भ्रम से भरमाए वेद पुराण कतेव कुरान हसेव थके कर हाथ न आए पूर्ण प्रेम प्रभाव बिना पद स्यों किन श्री

दीन दयाल दया कर श्रीपद सुंदर श्रीपद महापद ए है। काम न क्रोध न लोभ न मोह न रोग न शोक न भोग न भय है। देह भी न स्नेह सबोधन नेह विरक्त अगेह छह है। जान को दे दो जान को दे दो जमीन को दे दो जमान को दे काहे को डोलत है तुम रे सुत सुंदर श्री पदमा पतल है। रोगंते अर्शोगंते जल जोगंते वो बांध बचावे शत्रु अनेक चलावे।

जाच भुजंग सो दानव देव अभेव तुम सब ही कर ध्यावे भूमा का सब ताल प्रसातल जाच भुजंग सब है सिर न्यावे पाय सके नहीं पार प्रभाहु को नेत ही नेत वेद बतावे खोज थके सब ही खुजिया सुर हार परे हर हाथ न आवे नारद से चतुरानंद से रुम नारग से सब हु मिल गायो वेद गति वन वेद लखयो सब हार परे हर हाथ न आयो पाय सके नहीं पार उमापत सिद्ध सनात सनंतन ध्यायो ध्यान धरो तह को मन मै जह को अमितोज सब जग छायो वेद पुराण कतेब कुरान अभेद निर्वाण सब पचहारे भेद न पाय सके वन भेद को खेदत है छेद पुकारे राग न रूप न रेख न रंग न साग न शोक न संग तिहारे याद अनाथ अगाध बेगद वैक जप्योत नहीं कुल तारे तीरथ कोट किए स्नान दिए बहुदान महाव्रत धारे देश फिरो कर भेष तपोधन के जरे न मिले हर प्यारे आसन कोट करे अष्टांग धरे बहुन्यास करे मुखकारे दीन दयाल काल बजे बिन अंत को अंत के धाम सिधारे त्व प्रसाद कबित अत्र के चलैया चित छत्र के धरैया छत्र धारियों के चलैया महासत्रन के साल हैं दान के दिवैया महामान के बढ़ैया अवसान के दिवैया।

पूरबी न पार पाव हिंगुला हिमाल ध्याव गोर कर दे जी गुण गाव तेरे नाम है। जोगी जोग साध पौन साधना कि तेग बंध यार बके यार भी आराध तेरे नाम है। फरा के फिरंगी माने कंधारी गुरे से जाने पच

भंग के बंगाली फिर हंग के फिरंगा वाली दिल्ली के दिल वाली तेरी आगे मैं चलत है। रोह के रोहले मांग देश के मंगेले वीर भंग से बुद्धेले बाब पुंज को मलत है। गोखा गोन गावे।

काल हूं के काल है के शत्रुन के साल है के मित्रन को पोगत है के वृद्धता की वासी है। जोग हूं को जंत्र है के तेज हूं को तंत्र है के मोहनी को मंत्र है के पूर्ण प्रकाशी है। रूप को निवास है के बुद्ध को प्रकाश है के सिद्धता को बास है के बुद्ध हूं को घर है। देवन को देव है निरंजन अभेव है अदेवन को देव है के शुद्धता को सार है। जान को बचैया है मार को दिवैया है।

विश्व को भरण है गया, पदा को हरण है गया, सुख को करण है गया, तेज को प्रकाश है, पाई है न पार पर अवार हूं को पार जागो की जत विचार सो विचार को निवास है। हिंगुला हिमालय का वह बसी हल विधव पूर्व बिना पार पावे असत अनाश है, देवन को देव महादेव हूं के देव है, निरंजन अभेव नाद वह अविनाशी है, अंजन विहीन है, निरंजन प्रवीण है, सेवक अधीन है, कटैया जय मजाल के, देवन के देव महादेव के देवनाद भूम के भजैया है, मोहैया महाबाल के, राजन के राजा महासाज हूं के साजा महाजोग हूं के जोग है, दरैया द्रम चाल के, कामना के कर है के बुद्धता को हर है, सिद्धता के साथी है के काल है कुचाल के, छीर कैसी छीरावत छाज कैसी छतरा नेर छपा कर कैसी छप कालिंद्र के कुल के, हंसनी सि सिहारो मही रसी हो सन्ना बाद गंगा कैसी धार चली सातो सिंध रूल के, पारसी बल्लाऊ गढ़ रूपा कैसी रामपुर सोरसी सुरंगाबाद निके रही झूल के, जम्बासी चंदेरे गोल्ड चांदनी सि चांदगढ़ कीरत तिहारी रही मालती सि फूल के, फटक सी गलास कमाऊ गढ़ कांसी पूर सी ससी सुरंगाबाद निके सोहियत है, हिमा से हिमालय हर हार सी हलब्बा नेर हंस कैसे हाजीपुर देखे मोहियत है, चंदन सी जम्बावती चंद्रमा सी चंद्रगिर चांदनी सी चंदगढ़ जोन जोहियत है, गंगा सम गंगधार बकांसी बुलंदवाद कीरत तिहारी के उजियारी सोहियत है, फरासी फिरंगी फरासी सके दुरंगी मकरान के बृदंगी तेरे गीत गायत है, भकरी गंधारी गोर खरी करते जचारी पौन के आरी तेरो नाम ध्यायत है, पूरब पलाऊ काम रूप कमाऊ सर्वठौर में विराज जहाँ जहाँ जाइयत है, पूर्ण प्रतापी यंत्र मंत्र दे।

जिन्ना जिन्ना मैं सब जो सब जो सब जो सब जो सब जो सब जो सब जो सब जो सब जो सब जो सब जो सब जो सब जो सब जो सब जो सब जो सब जो सब जो सब जो सब जो सब जो सब जो सब जो सब जो सब जो सब जो सब जो सब जो सब जो सब जो सब जो सब जो सब जो सब जो सब जो सब जो सब जो सब जो सब जो सब जो सब जो सब जो सब जो सब जो सब जो सब जो सब जो सब जो सब जो सब जो सब जो सब जो सब जो सब जो सब जो सब जो सब जो सब जो सब जो सब जो सब जो सब जो सब जो सब जो सब जो सब जो सब जो सब जो सब जो सब जो सब जो सब जो सब जो सब जो सब जो सब जो सब जो सब जो सब जो सब जो सब जो सब जो सब जो सब जो सब जो सब जो सब जो सब जो सब जो सब जो सब ज

कह चाओ पई सम सतर सैस भणी जय अर्ध सैस हुन तीन कह जय भादव सुदी अष्टमी रवारा तीर सत द्रव ग्रंथ सुधारा इत श्री चरित्र पखयाने त्रिया चरित्र मंत्री भूप संबादे।

नाहीं प्रभ धर्म जुद के चाय सवैया। धन जियो तह को जग में मुख ते हर चित में जुद विचारे। देह अनत ननत रह जस नाव चढ़े भव सागर तारे। धीरज धाम बनाए एह तन बुद्ध सदीपक ज्यों जियारे। ज्ञान की बढ़नी मनो हाथ ले कातरता कुतवार भारे दोहरा। राम कथा जुग जुग अटल सब कोई भक्त नेत। स्वर्गवास रघुबर करा सगरी पुरी समेत चौपई। जो यह कथा सुने अर गावे दोख पाप तह निकट न आवे। बिशन भगत किए फल होई आद ब्याह छह सकै न कोई। सम सत्रे सहस पचावन हाड वधी प्रथम सुखदावन। तौ प्रसाद कर ग्रंथ सुधारा भूल परि लौ लहु सुधारा दोहरा। नेत्र तुंके चरण तर सत द्रव तीर तरंग। श्री भगवत पूरन कियो रघुबर कथा प्रसंग दोहरा। साध असाध जानो नहीं बाद सुबाद विवाद ग्रंथ सकल पूरन।

गुर चरण लागे वाजे अनहद तूरे। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। मंदावणी महला पंजवां। थाल विच तिन वस्तु पइयो सत संतोख विचारो। अमृत नाम ठाकुर का पयो जिसका सब सुधारो। जे को खावै जे को वंचै तिसका होए उधारो। ए वस्तु तजी नह जाई नित नित रख उर धारो। तम संसार चरण लग तरिय सब नानक ब्रह्म।

दुकालं प्रणासे दयालं स्वरूपे सदांग संगे अपहंग भूते देख देखो फतेह नुसरत वेद्रन याप्तज आज नानक गुरु गोविंद सिंह जी श्री अकाल पुरख सहाय दरबार मित्र दरबारा सच खंड से निरंकारा लक्ष्मी खड़े तुम्हारे दरबारा सब जो चेक नमस्कारा दोहरा नानक गुरु गोविंद सिंह जी पूरन गुर आता।

पाली विस्माद अग्नि खेडा विडाली विस्माद धरती विस्माद काने विस्माद साध लगे प्राणी विस्माद संजोग विस्माद विजोग विस्माद भुख विस्माद पो विस्माद विस्माद साला विस्माद विस्माद रा विस्माद निड़ा विस्माद रुस्माद देख।

0: तिस जोहारी स्वस्थ तिस तिस दीवाने पग नान सच्चे नाम बिन क्या टिका क्या तक मतलब
1: लख ने किया चंगे आईया लख ना परवान लख तप।